राज्य के एक्टिव सोदो थी रंगलो मिस्टर बेगा कमाशा अकुरेंगो तनु का क्रेडिट रेटिंग दक्कुरुमा की वरन नादिरु कमे कमा मालिकं कमा सरकार के कंपनी तक आपे है उजारा विदार वजे हंगुरामा के दोस वर्विस राज्य के एक्टिव सोद हम मगु का ही फेट माय को फिचुन राज्य दीफा ओए क्रेडिट रेटिंग भनी मति को फा एगो तुम फिचुन एमे फहुन नेरुनु रेटिंग गावने एकुरे राज्य गावे सीसीसी रेटिंग सीसीसी सीया मति को फा

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मगरिब नमाद वगत
1: अल्लाहू अकबर अल्लाह

0: मी मरियम रिस्का रशीद रिस्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नायक
1: मोदी है 1 MHz दिवे ही एफएम
2: चादुराग

0: Movie Mode. Movie Mode.
1: ekam e te mi hon de tere ga ofe de misunderstandings ta ke den e asu buna an hem buna nama e mi hon ke va shanti be bai mi hon be de no ve te mi hon friends friendship arne kuria da ka shet de hem ve e anna misunderstandings ta ke asu mi kam feeling en dani men part 1 na ki arne e mi hon ge friendship feshum da ko ade ba asu
2: yes hendo evaniega okay hema rahometre kamuge gulume den ekalawara tafaatu de mihege de rahometringe de medu gufe de gulume mega aslo mi dakka adeni do te husiya mi film ge me khasa kamake ko ba
1: husiya emme mi te kamadani aslo mi film wara mi fantasy film me ga me oleni te witches to ane hem bolanya den aslo wara computer graphics on heavy one ta ekam green screen ek ga mi muli film ane shoot kurun ge patal ga ma mi aslo set ta ken hata fa ane ego ta mi film shoot ko fa hore em ve mi film ge ana vibe e wara ta fa tu aslo se
2: ehme ma hame gine bala fa nimmalani ki nuundo husiti mi ge back story ya huri hachi balando
1: e ba yes yes yes huri hachi follow according
2: ha okay emme fa home film beli kon irako
1: emme fa home beli fa mi film in nani mi tiar ringa te november hisab ge pona
2: okay then insta stella ai comfort movie go to gati hoti then ege fa hun annani mi film kita fa har mi film bala fi
1: mi film yar cinema ge puro pedin ए फ्रेंड का किया पर पहले हम गए मैं माधव के हाथर फर्स्ट फॉर पहले जो करने आदि हार मैं फिल्म रिलीज को 2024 का है मैं दया हर करने आदि नहीं दे
2: दया हर तेरे हाइक का फार बेली चे तो ए मी शो है मी हाथर है आई मी उना बला कोड को माधु इंगे हुसे मी फिल्म बाला फ्रे मी हर मी साथे के अमती गाइस ए मैं कम ना फिल्म बेली मी हुंगे बती भी एक मुगेस मी जो हित मेरे ने हंदा हुन्ना ने देवर खास वी मवर खास मी के मे खास मंजर गो तो हुसी ना गाणी को मंजर
1: Bara ragar swaal. Emme haas, emme touching moment ane hembunar na ma film nimenda iruga annaane lave, define gravity kiya lave. E lava den daani bara dilko 20 bar ka music ka ne lave, e scene daani. Da iruga Cynthia Erivo, e Wicked Witch ning Ariana was the Galinda. Galinda aluwaane Cynthia ka mean cape. E na fly kuran natta la iruga priwanga. Then Hussein had to see for one in a way of a goodbye of Bunaveka Halagotakang a scene dani, a scene hama visually was very emotionally was very heavy. A hama emme
2: fahakola. Yeah, very emotional scene at the Bunahang against Stephen Gotahuri hatches.